0: अनि त्यसपछि के भयो त बाबा?
1: त्यसपछि के भयो फेरि पछि भनौला है बालक।
2: भोलि कैलाश पति शिव पार्वती की, भोलि बम्बई जाने।